दसैँमा जीजू ब्रांड तथा सीजू मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉपलोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जना, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैँ तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्थिपरन्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। सूर्या सौरमतिन्दुरुश्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रा सुखं संसनि।

0: र आईसीसी लीग दुई को जारी खेलमा नेपालले क्यानेडालाई दियो 236 को टार्गेट। रोहित पौडेलले बनाए शतक। क्यानेडा अहिले ब्याटिङमा। हवस् त नेपाली खबर अहिलेलाई यति नै। अपरान्ह 4 बजे नेपाली खबरका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
1: रेडियो स्पाइनो 89.8 मेगाहर्ज। तपाईं हाम्रो अटुट स्पाइनो।